अब की बार बख्श बंदे को बहर न पौजल फेरा। सतगुरां दे भाणे अंदर बहुत ही सत्कारयोग माता हरबंस कौर जी, तिन्हां नूं जितने कु सवासां रूपी अरजा दे करके सतगुरां ने इस मातलोक ते भेजिया सी, अपनी सवासां रूपी अरजा भोग के सतगुरां दे चरण विच जा विराजे सन। आपां सारिआं ने रल के कीर्तन रूपी अरदास कीती है कि सतगुरु जी अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल वेर। इस मात लोक अंदर विचरदियां माता जी तो जाने अणजाने विच बेअंत तरह दियां भुलां गलतियां हो गई ने, नाच तारदे हुए सदीव काल लई आवागुण दे चक्करां तो बचा करके अपने चरना कमलां विच निवास ते पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। सो प्यार वाले इतनी सेवा प्रवान करनी जी, दसरिआं तो कीर्तन करदिआं तो बेअंत तरह दियां भुलां गलतियां हो गई ने, सतगुरु जी अते सत संगत बख्शन योग है, बख्श लेना। आओ हुण साडे बहुत ही सत्कारयोग गुरद्वारा साहब दे हेड ग्रंथी भाई साहब भाई रविंद्रपाल सिंह जी, वह आप जी ने कथा विचारा सरवण कराउणगे जी। दसरिआं नूं देओ सीस पलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

हे प्राणनाथ गोविंद है, कृपा निदान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है, करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है।

दूजी छोड़ को बाटड़ी कस सौज दलाए दूजे पावे नानकाओ बहन लुड़ंदड़ी जाए ती हटड़ी बाजार सौदा करण बन जा रहा सच वखर जिनी लद जा

एक ओंकार सदगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप अठ नंदन प्रथम राग पैरु वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे है बंगुली प्रथम राग पैरु वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गा

मंगली पुण्य सुलेखी की पई बारी ये पैरों की पांचो नारी पंचम हरख दिशाक सुनावे बंगाल मध माधव गावे हैं ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापै है संग रागनी पांचों थापै है गौंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सिंहती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्तांग में वारा प्रबल चंड कौशको बारा खौ खट आओ पौर आनंद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन्यायो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै भार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बानु आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारे पुने आय दीपक की बारी का छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौराओ कान रा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना शामिल श्री राघव गावह पांचो संग ब्रंगन लावह बैरारी करनाटी तरी गवरी गावह आसावरी ते पाछ सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचो थापी सालू सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खास्तम मेघ राग वह गावे पांचो संग बरंगन लावे है सोठ गुण मलारी तुनी पुन गावे आशा गुनगुनी उच्च सुरसु हो पुन कीनी मेघ राग सिंह पांचो चीनी

रण राव न को रह रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई नाम बंदे धीर सो कह टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो वैसे सुख सामने नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हां साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा भी साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्लोक दया करण दुख हरण उच्चरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिप्त न माया

परम सम्मानयोग चवर शतर तख्त दे मालक वालिए तो जहां रहमतां दे मुजस्मे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाए मान सतसंगी जनों सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी विच जिस संबंध विच आपां सारे विराजमान होए हाँ संसार की सब तो सिरमौर सच्चाई है सतगुरु जी ने कुरबाणी अंदर निर्णा किया है जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी का जो उपदेश गुरबाणी राही भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सन कोशिश करांगे सिर्फ 10 मिनट वास्ते उहदी व्याख्या आप जी दे सामने रख सकीए। सतगुरु जी कृपा करन पावन गुरमत गुरबाणी गुरशब्द विचार इतिहासक विचार सतगुरु जी आप तरस करके करवा लैन। आओ सतगुरु गुरसंगत जी आप जी करो कृपालता बख्शो असीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज गुरबाणी का जो शब्द भाई साहब जी हुणी पढ़ रहे सन कि कहत कबीर सुनहो रे संतो खेत ही करो निबेड़ा अब की बार बख्श बंदे को बहुण ना पव जल फेरा। सतगुरु साहब जी की पावन बाणी विच भगत कबीर साहब जी ने निर्णा किया कि अकाल पुरख इस शरीर रूपी खेत विच ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां राही संसार विच इंसान कर्म कर रहा है। कृपा करो इस जीवन दे विच कीती हुई कृत कीते हुए कर्मां दा नबेड़ा इसे संसार विच हो जाए क्योंकि अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पवजल फेरा कि यह समा है कि हुण बख्श दिओ दोबारा पवजल विच फेरा नहीं है। क्यों आख्या उहदा कारण सतगुरु साहब जी ने कहा कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की इह तेरी बरिया। महाराज जी ने कहा यह मौका है 184 जून उपाई मानस को प्रभ दी वड्याई। सतगुरु साहब जी कहन लगे इस पौड़ी ते जो नर चुकै आए जाए दुख पाए। महाराज जी ने इसे करके कहा कि अब की बार बख्श बंदे को हुण मौका है कृपा कर दिओ क्योंकि मानस जन्म दुलंभ है होए ना बारह बार जो बन फल पाके भोएंग रह बहुर ना लागे डर। सतगुरु साहब महाराज जी कहन लगे अकाल पुरख कृपा करो यह समा है यह मौका है दोबारा मेरे को समा नहीं क्योंकि सतगुरु साहब महाराज जी ने कहा कि इस जीवन विच ये मानस जन्म दुलंभ है होए ना बारह बार दोबारा दोबारा नहीं मिलना है। कहिंदे जिवें पक्या होया फल जमीन ते डिग पए ते दोबारा डाली नाल नहीं जोड़िया जा सकता इस तरीके दे नाल ये मनुखा जन्म है यदि प्राप्ति दोबारा नहीं है होर कोई साधन नहीं है जुड़न दा। सतगुरु कहन लगे अकाल पुरख तुसी कृपा करो रहमत करो ये गल समझ विच सुरत विच आ जाए कि जिस दिन 184 जून विच उत्तम जन्म सो मानस देही अखी वेखण करन सुनन मुख सुभ बोलन बचन सुनेही नाल कह दिता हथी कार कमावनी पैरी चल सतसंग मिले ही किरत विरत कर धर्म दी खट खवालन कार करे ही। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे व्याख्याकार भाई गुरदास साहिब जी कहिंदे आ अकाल पुरख ये दात मिली है 184 जून विच 84 लाख जूनां विच सब तो उत्तम मनुखा जन्म ये प्राप्त होया प्रमा

तुम ही सज्जन सुहेले रखहु राखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो हो राखन हार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणा विच विराजमान गुरु प्यारी सात संगत जी, जिस संबंध विच आपां सारे एकत्र होए हाँ, राणा संदीप सिंह माणकू, सपुत्र सरदार सुरिंदर सिंह माणकू, बीबी कुलदीप कौर माणकू, अकाल पुरख के हुक्म सदका अकाल चलाना कर गए तिन्हां नवें तन ते अरदास समागम दे विच आपां हाजरियां भर रहे हैं। परिवार वल्लों दूरों नेड़ों चल के आईया समूह संगतां दा कोटानकोट धन्नवाद। लंगर प्रसाद परिवार वल्लों तैयार है, आप जी ने छक के जाण दी कृपालता करनी। उस तों पहलां सरदार डॉक्टर दविंदर सिंह जी जीतला, वह आप जी के सन्मुख दो मिनट वास्ते हाजरी भरनगे। बेनती करते हाँ डॉक्टर दविंदर सिंह जी जीतला, वो दो मिनट वास्ते आप समूह संगतां दे सन्मुख हाजरी भरनगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मन चित वह उद्यम जा आहर हर जीव परया सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधु जी सतसंगत मिले सो दरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्त हरिया रहाव जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काहे मन पाऊ करिया।

हम देखा तह डूबी अले मन एक न चित समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ

ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकट्ठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आजुगाद स्वरूप स्वयं पव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करूरण काता जे अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित वै मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वसकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो काहा दारिद दुष्ट दोख तेरा हा

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, खिलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाहे, सुरस न पावई, सुने मूर्चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह, हो जो या की एक बार, चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह है, सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कहिजय, भाद्रव सुधि

क्या नाही कर तेरा करदा तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजी शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मनाए वसया दिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटा हो जिस दिया है वडियाइया कह नानक सुनहो संतो हो शब्द धर्मो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंचदूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तू जिनको से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो हो बड़ पागी।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास उनी सहाय। अर्जुन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण।

तुद्या कैर दास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई कोई ना होना जाने मेरा मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगै अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास सो कहो टल गुर सेवी है अहनिस सहन सुपा दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण होवै सिफत खसमी नूर अरसों गुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदे साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा

बहादुर शाह बड़ा हैरान होया। संगत विच बैठा सोची जाता है, अगे भी कई बार सतगुरां नूं मिलिया, होर भी संगत आंदी है, पर जदों मैं मिलदा हां ते किड्डे प्यार विच भिज के सतगुरु आखदे ने धन गुरु रामदास, भी इस गल दे पिछे केड़ा राज छुपिया है। बैठा सोची जाता है, सतगुरु आखन लगे क्यों बई बहादुर।

0: सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव वंदम सहोदरा
1: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मान निरोदरा
0: गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
1: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मंजना परंपरा
0: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्रा
1: गुरुदेव

0: गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
1: गुरुदेव नानक हर नमस्कार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी फतेह।
0: वाहेगुरु साहब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक आदि गुरु नमे जुगाद गुरु नमे सत गुरु नमे श्री गुरुदेव नमे आदि गुरु नमे जुगाद गुरु नमे सत गुरु नमे श्री गुरुदेव नमे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माहे मिटावो सिमरो जास वसम ब्रेक
1: नाम जपत तनिक
0: वेद पुराण सिमरत सुधाखर
1: राम नाम क्या कर
0: गणक एक जे जीव सवै
1: ताकी मैं मंगणी लावे
0: ताकी एक दस तुहारो
1: नानक संग होए उदारो
0: सुखनी सुख अमृत प्रभु नाम
1: भगत जनागे मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सुन गर्भ न बसे
1: प्रभु कै सिमरन दुख जम न से
0: प्रभु कै सुन काल पर हरा
1: प्रभु कै सिमरन दुश्मन डरे
0: प्रभु सिमरत कस बिघन न लागे
1: प्रभु कै सिमरन अंत जागे
0: प्रभु कै सुन भाव न व्यापे
1: प्रभु कै सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभु कै सुन साध कै संग
1: सर्व ज्ञान नानक रंग
0: प्रभु कै सिमन रिद सिद्ध नौ
1: निद प्रभु के सिमन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध
0: प्रभु के सिमन जपता पूजा
1: प्रभु के सिमन बिनसे दूजा
0: प्रभु के सिमन तीर्थ सुनानी
1: प्रभु
0: के सिमन होए सो
1: भला प्रभु के सिमन सफल फला
0: से सिमरे जनाब सिमराए
1: नानक के लागो पाए
0: प्रभु के सिमन सब ते उच्चा
1: प्रभु के सिमन उतरे मुचा
0: प्रभु के सिमन तृष्णा बुझा
1: प्रभु के सिमन सब सुजे
0: प्रभु के सिमन ना जम तरासा
1: प्रभु के सिमन पूर्ण आसा
0: प्रभु के सिमन मन की मल जाए प्रभु जी बसे साध की
1: नानक
0: जप का दास दसना
1: प्रभु
0: को सिमरे से तनवंते
1: प्रभु को सिमरे से पदवंते
0: प्रभु को सिमरे से जन प्रभु को सिमरे से
1: प्रभु को सिमरे सर के राजे
0: प्रभु को सिमरे से सुखवासी
1: प्रभु को सिमरे सदा विनाशी
0: सिमन ते लागे जनाब ते अल्लाह
1: नानक जन की मगर वाला
0: प्रभु को सिमरे से परोपकारी
1: प्रभु को सिमरे ते सत बलिहारी
0: प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे
1: प्रभु को सिमरे ते सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमरे ते नातम जीता
1: प्रभु को सिमरे ते निर्मरिता
0: प्रभु को सिमरे ते नानद कनेरे
1: संत कृपा तेन दिन
0: जाप के सिमन कार्ज पूरे
1: प्रभु
0: के सिमन हर गुण बाणी
1: प्रभु
0: के सिमन निश्चल आसन
1: कमल
0: प्रभु के सिमन आना दचनकार सिमरे से जन जिन को प्रभु पिया
1: हर
0: सिमन कर भक्त
1: प्रगटाया
0: हर सिमन पै सित जति दाते
1: हर
0: सिमन धारी सब धरना
1: हर
0: सिमन क्यों सगल कारा
1: हर सिमन में आपने कारा
0: कृपा जैसा बुझाया।

हनुमाना तेरा सब सहाई जय केवल नाम सब तेरा चले हर को नाम किन मैं उदारी हर को नाम कोट पापर हरे नानक पावो सुख तुनेरे हर का नाम जब सुखिया हर का नाम जब निस्तर है हर का नाम जब दागावे तेरा नाम सको तुसेला नानक गुरु परम गत पागे नाम जब पद पार प्राई हर का नाम कित काल उदार है नाम जब पावे विश्राम हर का नाम कोट पाप होवे नानक पाए साध के संग हर का नाम हुआ संतोषा हर का नाम संग उजियारा हर का नाम ते नाल पुछानू ते हर के नाम की दूर पर शाम ते नानक हर हर अमृत बरखे संत जना के मन विश्राम हर के नाम उदरे जन कोट हर हर अमृत साध कुमाद पार ब्रह्म जन की नो दान नानक जन के फिरत विवेके हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर नाम जब तो परे न भंग हर के नाम जन शोभा पाई हर नाम जब कृष्णाई वियोग नानक पूजे हर देवा हर तन जन को आप प्रभु दीना हर प्रताप जन अवर न जानी सुन समाद नाम रस माते हर का भगत प्रकट नहीं छपे नानक जसा के दे दे काम दे हर रूप गाओ नाम सुनता दुख लता सत प्रताप दुख सब रस है

0: मिथ्या नाही रसना परस
1: स्वार्थ
0: रूपना पेखा नेतर
1: कारना
0: सुन काहुक निंदा प्रसाद विख्या पर हर इंद्री जित पंच दोष ते रह सो सो जे सुपर सो प्रसन्न कर्म करत हो बहन है कर्म काहु फल की सानी बासा
1: संत
0: अनंतर सरण गोपाल
1: आप
0: दृढ़ हर नाम जपावे भगवंत भक्त का रंग मनते बिनसा सगला भरम सा सम पापा मल खोबा भगवंत की टहल करे नित नीत हर के चरण हृदय बसावा सो पंडित जो मन प्रबोधा राम नाम सारा पीवा हर की कथा हृदय बसावा वेद पुराण सिमरत बूझे मूल जो वर्ण को देव दे बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो जो जप तिसकी गत होए कर कृपा अंतर धारा सर्व रोग का उपद नाम काहु जुगत कित न पाइये धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तिसना त्रि आया सदा नेट नेट हर जान अपने दास को आप कृपा कर सागर संग आत्म दास रब की आगे आत्मितावा तैसा हर्ख तैसा सोग तैसा स्वर्ण तैसे उस माटी तैसा मान तैसा अभिमान जो बरताए साई जोगत पार ब्रह्म के सगले ठाओ आपे कर्ण करम जोग वसर आप अंतरंग जैसे मत देता सब प्रगा

0: पावे सगले बिरथारे नरक सब फिर उतार हर दरगे को कैसे गावे जिसे भलाई ठीक ना आवे कौन आनंदता की निर्मल सोए तब इसको सुख ना ही कोई तब लगर जोर में फिरता तब लगने जता ही जीत तब लग तन राय देश जाए गुरप्रसाद नान को छूटे त्रिपुना माया पाचे पावे
1: बिना संतोष नहीं को राजा सब राजा

0: की टेक बिरथी सब जान
1: देवन को एक भगवान
0: जिसके दिए रहे अगाए
1: कौन जितना लागे आए
0: मारे रखे को आप
1: जिसका
0: हुक्म भूसुख हुए
1: नाम प्रकट होए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
1: नानक कितना लागे कोए
0: सुत मन में करन कार
1: पर मेरे सब व्यवहार
0: मन रसना अमृत पियो
1: सदा सेला काल जियो
0: नो पीर ठाकर का रंग
1: सत्संग में से सब संग
0: चल चलो मार्ग गोविंद
1: मिटे पाप जो प्यार बिंद
0: हर हर कर्म सर्वन हर कथा
1: हर दर के नानक उज्जल मदा
0: पागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: नाम नाम जो करे विचार
1: ते मंद गणी संसार
0: अंतन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो दे सुखी
0: एको एक एक पछाने
1: ए तो जियो सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन माने
1: नानक तिने न जन जानिया
0: हर प्रसाद अपन आप सूझे
1: जी जानो कृष्णा बुझे
0: सा संग हर हर जस कहे
1: सर्व रोग ते अर्जन रहत
0: आनंदन कीर्तन केवल बखियान
1: रस में सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: श्री गटिए जम की पासा
0: हर ब्रह्म की जिस मन को
1: नानक से न लागे दुख
0: जिसको हर प्रभु मन चित आवे
1: सो सत से ला नहीं डुलावे
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सो देव को किसे डरे
0: जैसा सा तै सा दुष्ट आया
1: अपने काल में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया
1: गुरु प्रसाद सब बुझिया
0: जब देखो तब सब कुछ मिला
1: नानक सो सो ये सुख
0: नै कुछ जन्मे नै कुछ मरे
1: आवन जदा भी करे
0: आवन जावन दृष्टान दृष्ट
1: अगर गारी दारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल में आप
1: अनेक जुत्र साब दाब
0: नासी नाही कुछ खंड
1: तार तारे ब्रह्मांड
0: लख पे पुरख प्रताप
1: आप पाए तन अनुजाब
0: जिन प्रभ जाता सो सो बाबा
1: सगल संसार उदय तन मंद
0: आपके सेव सगल आधार
1: आपके सेव कारण
0: आपे मेल लय कृपाल
1: गुरु का सब जपे निहाल
0: की सेवा सोई लागे
1: सो कृपा
0: नाम जपत पावे विश्राम किश करे सो प्रभु के रंग सदा होवे सो हुए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जस्ते अपजे तिस माहे समाये।

0: favorite father. इसे बेटा कोई ना है अपना सिरा पापे आप जैसे प्राणी लोचर कोई गतना कबे कर नाम प्रभु जो संकट सो है जा संस्था दिया दर पे प्रभु की कला बिना कहता है तेज ना जाने का वार
1: मन मूर्ख जिस बकर को लैंड तुम आया राम
0: नाम संकर पाया राम नाम हृदय में तोल अब क्या बिगा जंगल मुख उजला तर गए सोए नानक सब लियारे अरसार को अपना जियो साध पर जाइए कुर्बान सा संग हर कीर्तन गाइए हर गाय मदरस जाके सब सुनान दे पाया भूखे को देव दार पूर्व लिखे का रहना पाए इसमें सुरवा ना होगा सब दे उठ कर भले करनी नान सोजन निर्बल दिया तुझे नावे हर प्रभु जीत जागे ते कोई सचे ते सच मुकेत सच मुते साचा पासार पार ब्रह्म ये सच कर जाता नानक सोजन

0: जागृति धनो शिशार बुढ़ जात पाए विश्राम नारक नाम जप गुण दास मदाना करे स्वाओ मार्मिक से सार चरण तो है बेला रो पावे संग गुरु प्रसाद नाम जप लिया नानक रिया सरिस माए भगत पशुत सदा कृपाल सर्व कटा कट कृपाल भगत जना के प्राण आधार भगत पाए लावे मन हित नानक गुरी सर पर भगवान एक निम करके गुण गाए
1: भगत नाम की कथा मंगवाई
0: रसा जाती हर नीत निर्जल से

जो चरण सपे गए नाम जपावे तल समाए पूरे काम के निष्कराया आपे जाने अपने जी की ओत पोत अपन संग्राज दूसरों जसो दिखाए गुरु प्रसाद नानक के उदाहरण

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा
1: गुरुदेव
0: कर्ता सपा कर्ता गुरुदेव पति पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जा पुत्रा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा मूड पापी जित

0: हो न कोई।
1: जा कर तो सिरती को साजे आपे जाने सोई।
0: किव कर आखा किव सालाही क्यों मरनी किव जाना।
1: आखन सबको आके तू एक स्याणा।
0: वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा।

0: भंगे
1: संग गमे नम सासुर में
0: नम संग आसरे नम संग रासरे
1: संग जाते नम संग पाते
0: नम संग मजबे नम सस्त
1: संग देशी नम संग पेशे।

कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो शस्त्र बाणे नमो अस्त्र माणे अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते।

मूर्ख पार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश अंगराग न रंग जा कह जात पात ना नाम।

चक्रवर्ती चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र।

0: दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: ये देखी वीर पहचाना कर करके
0: जब उद करख करा करतारा प्रजा तरित तब धेय अपारा।

0: समेत प्यो संकरी कैठा
1: सरी सृष्टि काय जंबराज जगत सृष्टि
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो जयस्तु जितव सनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मेरे।

0: अमृत खोजे सो अमृत गुर ते पाया,
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
0: जी अजंत सब तो दुआपाए इक वेख परसन आया,
1: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया।
0: कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी विकम मार चलना।
0: लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना,
1: खन्यो दिखी बालो निकी एक मार्ग जाना।
0: गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी।
1: कह

0: समय सबको पिटपारे।
1: कोकत है जल में थल में पल में गल के नहीं करम बिचारा।
0: दीन दयाल दया निंदो कुन देखत है पर देत नहारे।
1: राहत है दुख दुखन काओ दल दूजन के पल में दल डारा।
0: गांड गांड पर चांड प्रहारन पूरन प्रेम।

0: पीत अतहीरन पत जूज सत्रन सो अतहीरन पीत जूज मरो तो साज पति जय
1: संत सहाय सदा जग माए कृपा कर से आम है बरनी जय
0: दे सेवा पर मोहे।

0: ए लालच हों गुण तो गुजरो
1: जब आजियो निदान बने अतिरन में तब जूझ मरो
0: तन जियो ते जग ते को जग में मुक्ते हर चित में युद्ध विचारे
1: दे इतना नित्र

शक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित